0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneumma.org.uk.
8: Hoshyar rahe. Kuch logon ne fraud ka ek naya tarika apna liya hai. Wo aapke gharon par Inspire FM aur digar charities ke naam par चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: Inspired. Inspire FM.
2: I have with

सोचें समझें, सोचने समझने से आप क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे। नेचर के साइकिल को एक्सेप्ट करने से आप क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे। अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करने से आप क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे। कोई इतना बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में कि एसेट छोड़ दे। नोबडी लीव्स एन एसेट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओन द एसेट, दे जस्ट डोंट वॉन्ट द लाइबिलिटीज, देन डोंट बी अ लाइबिलिटी। जिंदगी में आप लाइबिलिटी बनने के लिए आए हैं, जानबूझकर तो आप कोई भी नहीं लाइबिलिटी बनेगा। लेकिन हम जानबूझकर कंपनी अपनी ज़ात को बैंकरप्ट करा देते हैं, खुद लाइबिलिटी बन जाते हैं। लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है, शादी तो बड़ी दूर की बात है, पार्टनरशिप तो बहुत ही दूर की बात है। हम में से कई लोग इस काबिल भी नहीं उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उसमें आपके दिमाग में गेमें चल रही हैं, दुनिया, लोग, हालात, लोगों पर टांग रखना, कोई सोशल एक्सेप्टेंस के लिए चीज़ बना लेना, किसी के साथ पार्टनरशिप में अपने फ़ायदे उठा लेना। कल मैं हूँगा ही नहीं, पता नहीं कितना हूँ मैं, इस ड्रामे के अंदर फोकस करूँ मैं या जो मुझको दुनिया में करना है और जिस तरह मुझे डील करना है इसी से मुझे आखिरत, जो हम कहते रहते हैं, अगर हम आखिरत के मानने वाले हैं तो आखिरत के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या इन्वेस्टमेंट है? तो जब है ही कुछ नहीं, तो मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलां, मेरा ये, मेरी शादी, मेरी तलाक, मेरा बच्चा, मेरे साथ ये, मेरे साथ धोखा, मेरे साथ बचपन में, मेरे साथ माँ बाप ने, मेरे साथ बहन भाइयों में, और बाहर निकल भाई इन सारी बातों से। एडल्ट आदमी ये बातें सोचता रहता है। हम लोग जहनी तौर पे क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, मैन चाइल्ड, मोरॉन्स, इम्बेसिल्स। एक्चुअल में हम ये हैं, और मैं तो बता चुका हूँ बहुत दफ़ा मर्दों और औरतों को कि ये जिनकी जो हरकत होती है, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, उसको उर्दू में ये कहते हैं, और इसको हम लोग गाली समझते हैं, लेकिन ये वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं हमारे अंदर के, जो जो भी इनर चाइल्ड जो अभी तक हील नहीं हो पाया, जो हम चीज़ों को समझ नहीं पाए। हमारी ग्रीड ही ख़त्म नहीं हो रही, हमारी लस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही। हम वो उतना जमा करना चाहते हैं जितना हमने इस्तेमाल नहीं करना। जो हमने कमा लिया है वो उससे हमारी औलादें और लोग बर्बाद हो जाएंगे, बजाय इसके कि हम हर महीने काम करें उससे आपका कुछ बने और हर साल थोड़ी थोड़ी तरक्की हो, बजाय इसके कि इतना हो जाए कि आप पागल हो जाएं और उस पैसे को और उस चीज़ को छुपाते छुपाते अपने घर में और अपने कंपनी में और अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ शुरू कर दें। तो ये जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो इससे आपको सुकून आएगा। एक और बात जो यहाँ पर करना ज़रूरी है, देखें, जब आप बहुत नीडी होते हैं या आप डेस्परेट हो जाते हैं या आप किसी चीज़ की चाह में उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई मकसद हो, चाहे कोई फेम हो, कोई नेम हो, कोई भी चीज़ हो, तो फिर आपकी एक इंतहाई तकलीफ दे ज़िंदगी में आप पैर रख देते हैं, और ये एक विशियस साइकिल है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। और इससे आप क्या करते हैं, यू डिसरप्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। उसमें वक्त के ऊपर कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, कुछ पहले दूसरे डेकेड में मिलती हैं, कुछ तीसरे चौथे में मिलती हैं, कुछ कभी नहीं मिलती हैं। इन चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, नेचुरल साइकिल के अंदर ज़िंदगी चलती है। लोग आपसे मिलते हैं, अलहदा होते हैं, कुछ लोग थोड़े से वक्त के लिए साथ होते हैं, कुछ ज़्यादा वक्त के लिए, कुछ लंबे वक्त के लिए, कुछ लोग आपसे शुरू में, कुछ बाद में बिछड़ जाते हैं। ये एक नेचुरल फ्लो है चीज़ों का। कुछ चीज़ें आपके गिफ्ट से अलाइन ही नहीं करती, कुछ चीज़ों का आप में नेचुरल टैलेंट ही नहीं होता, कुछ चीज़ों का आपके लिए वो हिम्मत, वो ताकत, वो जेस्ट, वो रेजिलियंस ही नहीं होती कि आप वो हासिल करें। कई लोगों का वो प्रोफेशन ही नहीं होता, कई लोगों के लिए वो इंसान जिनके पीछे भाग रहे होते हैं वो इनके लिए नहीं होते, वो स्पेसिफिक रिश्ते के लिए नहीं होते, वो किसी और चीज़ के लिए होते हैं। उनके साथ हम ख़राब कर लेते हैं और उस वक्त को भी हम बर्बाद कर लेते हैं। तो जब आप डेस्परेट होने से बाहर निकलेंगे, नीडी होने से बाहर निकलेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, इस फाइन बैलेंस को समझ जाएंगे कि व्हाट टू होल्ड ऑन टू, व्हाट टू लेट गो, इस बात को समझेंगे हाउ मच इज़ गुड इनफ, मुझे इस दुनिया में कितना रहना है, कितने साल रहना है, कितना पैसा, कितना नाम मुकाम मुझे चाहिए अपने बेसिक काम करने के लिए, और जो कुछ आपको मिला है उस पे ज़्यादा ध्यान होगा, दूसरों को क्या मिला है उस पर ध्यान देने से बाज आ जाएं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर हैंडल कर सकें और ये प्रेशर आपको बॉदर ना करे। जब आप ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, बदकिस्मती से इस स्टेज पे आके आप वो सोचना शुरू करेंगे या वो करना शुरू करेंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। और ज़्यादातर बदबخت हम लोग 35-40 में हमें आके ये बात समझ आती है कि हमें सोच कर करने के लिए पैदा किया गया है। करने के लिए जानवर, हशरातुल अर्ज, रींगने वाले, उड़ने वाले जानवर, इन लोगों के लिए इनको सिर्फ करना है, इनको और कुछ नहीं आता, इनमें बेसिक इंटेलिजेंस है। हम में बहुत कुछ है, आर्टिकुलेशन की एबिलिटी से लेकर, इल्मुल बयान से लेकर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम दुनिया को मुसख़र कर रहे हैं। दुनिया हमारे ताबे है, सब कुछ हमारे अंडर है, हम कॉन्कर कर चुके हैं इस दुनिया को। तो जब हमें ये सोच कर करने से होता है, हम 40 साल तक क्या कर रहे होते हैं, वरीइंग से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी आती है, डेस्परेशन आती है, नीडीनेस बढ़ती है,
आपकी फीलिंग्स

0: बार बार हर्ट हो जाती हैं, तो वरिंग से आप अपने आप को रॉब कर लेते हैं, आपकी एनर्जी से, प्रोडक्टिव थॉट से, क्लैरिटी ऑफ माइंड से, चीज़ों को देख नहीं सकते आप क्लियरली, क्योंकि आप वरी कर रहे हैं 30-35-40 साल तक। और थिंकिंग शुरू कर देनी चाहिए तो शुरू से ही, जिसमें आपको तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने हो जाते हैं। जब हम इतना अर्ज के साथ, इतनी पागलपन के साथ किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे, तो आपको इर्द गिर्द नज़र आना बंद हो जाता है। और कई दफ़ा जो चीज़ असल में आपके लिए, वो आप उस चीज़ की साइड पे पड़ी होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रिंजेस के ऊपर वो चीज़ें होती हैं, और विल आप टनल विजन में चल रहे होते हैं सिर्फ लॉन्गर रन में, तो वो आपको कभी नज़र नहीं आती। और रास्ते में कई लोग जो आपके साथ होने चाहिए थे, कई अपॉर्चुनिटीज़, कई इन्वायरमेंट्स जो आपके लिए थे जिसमें आप कमाल कर सकते थे, वो छोड़कर उन चीज़ों के पीछे, उन लोगों के पीछे, उस पावर या कुर्सी के पीछे आप भाग रहे होते हैं, जो आपके एंड में जब आपके हाथ आती है तो सब कुछ आप लूज़ कर चुके होते हैं, मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी, रिश्ते भी, और बहुत सारी चीज़ें भी। तो इसको नज़र, ये समझना, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये जिस बंदे को इतनी सी बात समझ आ गई, ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ें, परेशानियाँ, फिर वो ढूंढा करेगा कि मुझे कोई तकलीफ़ मिले, कोई परेशानी मिले, कोई मसला मिले, मैं हल करूं। फिर आपको ये जो हर चीज़ आपके दरवाजे पे कोई तकलीफ़, परेशानी, मसाइल डाल जाते हैं ना लोग, ये ख़त्म हो जाएगा, आपका दुखना बंद हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा आपको, और फिर आपकी मर्ज़ी है, पिक एंड चूज़ करें। अब इससे बेहतर अगर क्लिप कोई समझता है कि रिकॉर्ड करा लेगा, तो वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपके सर है, सारे सेहरे आपके सर चले जाते हैं सजीला जी, बार बार
1: ये सब कुछ आप करते हैं,
0: ये हुआ क्या था? अब बताएं, ये जो क्या बताया है, क्या समझ आई?
1: हाँ, आपने तो मसले का हल, मसले की जड़ ही आपने खत्म कर दी।
0: मैंने, पता है ये क्या किया है
1: जी?
0: ये मैंने, एक बंदा था जो बड़ा वीक था, ठीक है, वो किसी से मोहब्बत करता था, तो वो उस बंदी को कुछ बता नहीं सकता था कि मैं आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ, अब हमारी शादी हो जाए, अब हमारे दो बच्चे हों जिनकी शक्ल मेरी तरह, अकल आपकी तरह, खुदा नखास्ता हो जाए, ठीक है, ये सब वो कह नहीं पाता था। तो उसका एक दोस्त था, जो एक बहादुर किस्म के बेवकूफ़ दोस्त होते हैं ना, जो सिर्फ उंगली करना जानते हैं, वो आपको मरवाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, तो वो आपको खाम खा की शह देते हैं, और फिर आपसे वो कहते हैं, जी आप ना ऐसा करो, इस दफ़ा जाओ, मर्द बनो और जाकर कह दो सब कुछ, ठीक है। तो वो बंदा फिर बड़ा तैयार श्यार होकर खुशबू वगैरह लगा के, यू नो, जाता है, और वहाँ पर उस बंदी के सामने खड़ा होता है, वो उसने अपनी स्पीच पूरी तैयार की होती है, और ऑफ कोर्स जब आप इतने डेस्परेट होते हैं, घबराए हुए होते हैं, हार्मोन्स बम्बार्ड कर रहे होते हैं, आपकी बेसिक, यू नो, चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा ड्रामा करके, यू नो, घबराए हुए, अगला बंदा बेचारा आम सा इंसान है, वही हर वक्त घबराया घबराया रहता है, उसको लगता है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे में तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन अब आपके दिमाग में घवा बना हुआ है, तो उसने उसको, मतलब, हवा बनाए हुआ है, ठीक है, तो अब आप उसके सामने खड़े हो गए, तो ऑफकोर्स आप अपना सारा लेक्चर भूल गए, ठीक है, मैं तो, हाँ तो, वो तो, नहीं तो, ये तो, लेकिन तो, फलां तो, पहले तो, अब जब ये कहने शुरू होते हैं तो उसको, तो अब वो दोस्त पीछे से उसे कहता है, बोल सब कुछ, ठीक है, तो दोस्त की तरफ देखता है और फिर लड़की की तरफ देखता है और एक सांस लेता है लंबी से और कहता है, सब कुछ। समझ रही? ये मैंने इसका एक छोटे से लतीफे में पूरी कहानी डाल दी है ऐसे ही, और मैंने पूरा समा बांधा है ताकि हर बंदे को नज़र आए, ये दोस्त कौन है, वो दूसरा कमीना दोस्त कौन है, वो लड़की बेचारी सामने कौन है जो दुपट्टा सीधा करके घबराई हुई है, ठीक है जी, और आपकी परफ्यूम से उसका सांस बंद हो रहा है और उसकी बॉडी ओडोर से आपका भी बंद हो रहा है, लेकिन आप जज्बाती हुए हैं इस वक्त, ठीक है जी। लोग बड़े कमीने हैं जब वो कहते हैं, सर आप तरह खुल के हंसते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। अरे भाई, मैं रोज हंसता हूँ, लेकिन इतनी सीरियस बातें हो रही होती हैं लाइफ में, तो मैं लोगों को हंसाता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, उन पे भी हंसता हूँ, हर वक्त लोगों की टांगें खींचता रहता हूँ, लेकिन शो में मैं कहाँ हंसूँ, कोई मुझे हंसाने वाला बंदा आए मेरे से हंसने की कोई बात करे, ठीक है, फिर हम भी हंसेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि सीरियस भी तो बातें करके सर भी तो दुखाता हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है मैं मुंह भी दुखाऊं हंसा हंसा के, क्योंकि दुनिया में जो लोग आपको बहुत हंसाते हैं ना, फिर यही लोग आपको बहुत रुलाते भी होते
1: हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने ये सोचना होता है कि जिस इंसान ने हंसाया है उसको कुछ थोड़ा बहुत लेवरेज दें कि वो कभी कभी आपको रुला भी सके, क्योंकि हंसाया भी तो उसी ने है ना, ये बिल्कुल ऐसा है, वही रब है हमारा जिसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ जो हम भूल जाते हैं, और थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ, थोड़ी बहुत परेशानी, वो भी हमें इतनी बड़ी पहाड़ जैसी इसलिए लगती है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं जानते, हम गजा के लोगों को कभी नहीं मिले उनको जानने के क्या है, ہم کشمیر کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے, ہم افریقن کنٹریز میں جو لوگ کھا پی نہیں سکتے ان کو کبھی نہیں ملے, انڈر نیرشڈ ہیں, ہم بیسک نیسیسٹیز آف لائف جن لوگوں کو نہیں ملی, کئی مجبور غریب لوگ جو عدالتوں میں جیلوں میں سالوں سے سڑ رہے ہیں بنا کسی گناہ کے, ہم کبھی ان سے نہیں ملے. تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے بس وہی سب کچھ ہے اور مجھے سب کچھ ڈیزرو کرتا ہوں. حالانکہ اگر حساب کتاب پہ دنیا میرا با جاتا نا تو بہت سارے لوگوں کے پاس جو ابھی ہے وہ کچھ بھی نہ رہتا اور جو کچھ ملا ہوا ہے وہ ان سے لے لیا جاتا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو ہمیں بنا ارن کیے ڈیزرو کیے ملا ہوا ہے. ہم کو صرف کوشش کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور ایک اسٹیپ فردر جانا ہے تو اس کو ڈیزرو کرنا ہے, ایک اسٹیپ اور فردر جانا ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ ڈونیشن ان کائنڈ ہے, چاہے کسی سے اچھی پیار بھری بات ہے, یا کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اچھی چیز میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا بوٹا لگا سکتے ہیں جس کے سائے میں کل کوئی بیٹھے گا, کوئی ایسی کوئی ایسا زکوٰۃ کا کام, کوئی خیرات کا کام, کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکے, ان کی زندگی ان کا مقصد کلیئر ہو سکے. یہی سب کچھ ہے اور یہی بچت ہے, باقی سب کچھ کھایا پیا گلاس توڑا باہر آنے نکل آنے آخر میں, یہ کس کو نہیں پتہ. یہی حساب کتاب کلیئر لکھا ہوا ہے دنیا میں, رب کی کتاب واحد چیز ہے, اس نے پورا حساب کتاب لکھ کر آپ کو دے دیا ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تم سے پہلوں نے یہ کیا ان کے ساتھ یہ ہوا, دیکھو تم کہیں ایسے نہ بن جانا, سوچو سمجھو دیکھو اس کو, اس طرح چیزوں کو ڈیل کرو, جو چاہو کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو گھومو, اس کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے, کچھ ایکچوئل میں نہیں ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہوگا اور اس حد تک خطرناک ہوگا. اور یہ دوسرا جو کرتے ہو جس میں چھوٹے سے اچھے کچھ مٹھی بھرنے ایک کام, آسانی پیدا کرنے والے, حقیقت کو جاننے والے, لوگوں کے کو مدد کرنے والے, یتیم غریب مسکین کے ساتھ یا جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ مدد کر دینے والوں کے لیے, یہ ہے اور ایسا ایسا ایسا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آپ کے لیے ہے. اور اسی سب کے بیچ میں رہتے ہوئے سب کچھ انجوائے کرتے ہوئے رب کی مہربانیوں کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. کام اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اسی لیے اس کو غفور الرحیم کہتے ہیں, کیونکہ سب کچھ دے دیا ہے. اس کے بیچ میں تمہاری بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے تمہاری یہ سب یہ کیا جاتا ہے. اور آخر میں ہوگا, ہوگا وہی جو اس نے کہا ہے. کچھ بھی ہو جائے, دنیا کا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, پاورفل سے پاورفل آدمی کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن جو اس نے کہا ہے وہ ہوتا آیا ہے, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس اور بھی, اسی لیے جس طرح وہ بات کرتا ہے, جیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, جیسے وہ چیزوں کو کر کے دکھاتا ہے, اتنی اوتھینٹیسٹی صرف اس میں ہے, اسی لیے وہی عظیم عظیم تر ہے اور اسی لیے وہ آل نوئنگ امنیپوٹنٹ ہے. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اور یہ جو بہت مزے کے جو نا اسرائیلائٹس کو جو اسرائیل کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے دا ون ہو ریسلز وتھ گاڈ. یہی ہم کرتے رہتے ہیں, ہم ہر وقت خدا کے قانون سے ریسل کرتے رہتے ہیں. ہمیں دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال, نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا ہمارا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, ہم کس قابل ہیں, کس جوگے ہیں, سب پتہ ہے ہمیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے, ہم بڑے ریفائن انسٹرومنٹ ہیں, ہمیں بہت کچھ پتہ ہے, لیکن ہم صرف زور لگاتے رہتے ہیں, خامخواہ زور لگا کے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بھی لگایا 35-36 سال, سب کا سب ضائع ہو گیا. جب سمجھ آیا تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جو کچھ چاہیے تھا وہ ویسے ہی مل جاتا ہے ایز اے بائی پروڈکٹ. تو اتنا زور کیا لگانا, اتنا وری کرنے کی, اتنا پاگل ہونے کی, اتنا ذہنی مریض ہونے کی, اتنا لوگوں کو پہ جذبات اور ہیجان انگیز قسم کی وار لانچ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے, کچھ بھی نہیں, خامخواہ کا ضیاع ہے. اور جس کو نہیں سمجھ آتی وہ تو کرتا رہتا ہے, روز کرتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. جس نے کیا وہ صرف راستہ یہ بتا سکتا ہے, کر کے دکھا سکتا ہے, باقی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے جی, کیسے بناتی ہیں آپ یہ کلپ؟
1: میں کچھ نہیں کرتی سالا, سب کچھ آپ کرتے
0: ہیں. یعنی کہ پھر وہی والی, یہ تو آپ بالکل وہی کہہ رہی ہیں جو میں بھی کچھ نہیں کرتا, یہ سب آپ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں کر کے اگر یہ بنتا ہے اور آپ کا بھی کچھ نہیں کر کے یہ بنتا ہے تو اللہ کرے ہم سارے. اچھا ہمارے بارے میں شاید انہوں نے کہا تھا نا, وہ جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو یہ تھا وہ کمال, اب ہم کو سمجھ آئے. ہم تو جلال سے جمال تک, بلکہ جمال سے جلال تک پہنچے اور پھر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آیا کہ ہم کمال مس کر رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے میرے نیفیوز کے نام ہیں.
1: اچھا یہ جب آپ نے بتائے.
0: ہاں جی, سارے کے سارے بہت ٹیلنٹڈ اور کمال بچے ہیں.
1: माशाल्लाह
0: सारे अपने आप को हमसे बहुत समझदार समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे। और एक एक मेरे भांजे ने एक दफ़ा मुझे कहा जवानी में कि मामू अगर मैं आपकी तरह हैंडसम होता ना, ठीक है ये बात है आज से कोई 25 साल पुरानी, और वो भी बाद में उसने भी आर्मी वगैरह ज्वाइन किया, मामू मैं आपकी तरह होता ना तो मैं लुट डाल देता, ठीक है। तो मैंने आगे से कहा मेरा पुत्र अल्लाह इसीलिए गंजे को नाखून नहीं देता क्योंकि वो अपना सर छीन लेगा, तो रब ने तुझे मेरी तरह नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था तो लुट डाल देगा,
1: तो
0: लुट डालने की जरूरत नहीं है, लुट आपके होने से वैसे ही पड़ जाती है। आज वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना रैंक्स वैंक चीज़ें शीज़ें ये सब कुछ करता है, तो मुझे उसके बारे में कुछ उसने बड़ी एक दो बातें पता, बड़े साल हो गए तकरीबन 15वीं मुलाकात नहीं हो सकी, वो अपने काम पे होता है, तो एक दो बातें मुझे पता चली जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो जब मुलाकात होगी। और ये वो बच्चा हुआ करता था जब मैं स्कूल में हम पढ़ा करते थे, तो हम सीनियर थे स्कूल में और इसको नया नया स्कूल में दाखिल किया, तो वो स्कूल वही था, तो जहाँ हमारी क्लास थी ना उसके बिल्कुल साथ वो घंटी लगी हुई थी, वो यू नो पीरियड दिखाने के लिए नहीं, वो क्लास का जो पीरियड ख़त्म होता है तो वो जो घंटी बजती है तो बिल्कुल हमारे कान के पास लगी होती थी, तो इसको हमने नया नया स्कूल में दाखिल किया, उसी स्कूल में उनके रिश्तेदारों का भी था वो, तो स्कूल में हम बैठे हुए हैं, हमारी टीचर कोई बड़ी सब मुश्किल चीज़ मतलब पढ़ा रही है और हम बैठे हुए हैं वहाँ क्लास में, हम भी 5वीं 6वीं में थे 10-12 साल के तो एकदम खिड़की में से आवाज़ आई मामू मैं तो जब पैदा हुआ था तो बताया तो है, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं मामू था।
1: अच्छा
0: हाँ जी, मेरी एक भांजी मेरे से 1 साल बड़ी है, हमें पैदा करने के लिए बड़ी तकलीफें काटी गई, 35-34 साल की तपस्या की गई।
1: आप बता रहे थे खान जी,
0: उस तपस्या के बाद हम पैदा हुए, पठानों के लिए उनको लगता था हमारी बड़ी जमीन है जो कि बाद में पता चला इतनी थी नहीं और उस गांव में गांव के जो ना जो कुछ लोग होते थे जमींदार उसमें हम लोग हुआ करते थे, और हमें बड़ा मतलब बड़ी बात थी हमारी पैदाइश, पहली दफा गांव में वो केरोसिन ऑयल बदबूदार पंखा आया जो मेरी माँ लगा के बाहर चली जाया करती थी और जो हमारी घुटी जिसने डाली थी वो मेरी माँ कहती है हमसे गलती होगी, हमने गलत बंदे से घुटी डाली। आपको पता है मैंने शायद किसी शो में बताया था मुझे घुटी किसने डाली बचपन में, खान जी जो थे ना उनकी जो नेचर थी पर्सनैलिटी थी जरा मेरी टाइप थी ना, वो अपनी तरह का दूसरा इंसान दुनिया में लाने से डरते थे, ठीक है ख्वाहिश बहुत थी उनकी, वो पीरों फकीरों को नहीं मानते थे लेकिन मेरे चक्कर में उन्होंने बड़ी चादरें चढ़ाई, ठीक है तो वो भी मान गए, सब कुछ मान गए क्योंकि जब औलाद चाहिए होती है चीज़ें चाहिए होती हैं प्रेशर इतना होता है, तो उन्होंने खान जी से मेरी माँ कहती है मैंने खान जी को बोला घुटी डाल दे, तो उन्होंने कहा नहीं किसी और ही को लुपाओ, ठीक है। तो उस वक्त गाँव में एक बंदा हुआ करता था उसका ना जज खान जैसा कुछ नाम था, वो सुबह सुबह माश्की था, वो सुबह सुबह चमड़े के उस जमाने में लेदर के बड़े बड़े
1: हाँ जी वो पानी जो डालते थे
0: हाँ, तो वो गांव में आके घड़ों में सुबह सुबह पानी डाला करते थे, तो वो हमारे सारे जो गांव के जो हमारे जो लेम के घर थे उसकी ड्यूटी थी कि वो सुबह सुबह ये पानी डाला करे आके, तो वो सुबह पानी डालने आया, वो मलंग सा आदमी था, उसका कोई घर बार कुछ नहीं था तो उस जमाने में जहाँ सबको घर बार और मामलात होते थे वो मलंग सा एक आदमी था जिसका कोई घर बार नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था, तो वो आया सुबह सुबह तो उससे उन्होंने मुझे घुटी डलवा दी, तो मेरी माँ बाद में कहती हाय गड़बड़ गलती हो गई हमारे घर मलंग पैदा हो गया ये इतनी खतरनाक घुटी कहती है उसकी थी हमें नहीं पता था, तो जब भी मैं सीधी सही बात करने लगूँ मेरी माँ कहती थी हमें पीर फकीर नहीं चाहिए सीधा सीधा काम करने वाला बंदा चाहिए, शादियाँ करो बच्चे करो पैसे कमाओ फलां करो इस किस्म की बातें, तो मैं कहता अच्छा ठीक है वही काम मेरे क्या आप कह रही हैं जिसकी वजह से आप इतनी दर्दमंद जिंदगी और हर वक्त अपने दुखड़े सुनाती रहती हमको।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ, यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं नज़में सुनना चाहते हैं तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे, स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है एंड्रॉयड है ब्लैकबेरी है स्मार्टफोन्स हैं वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: The longest chapter in the Quran is Surah Al-Baqarah, which has 286 verses. The shortest is Surah Al-Kawthar, which is only 3 short verses long.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk.

0: पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए, मुत्तहिदा अरब अमारात से 22, इराक और अम्मान से 11, कतर से 5, जबकि बहरीन और मलाइशिया से 1-1 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गजा जामे मंसूबे और फलस्तीनी स्टेट को मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूएई के वज़रा खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इसराइल की जानब से ट्रंप के गजा जामे मनसूबे के रोड मैप को मुस्तरद करना मनसूबे पर अमल दरामद से वाज़े इनकार है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हंगरी की मोटरवे में पैसेंजर बस को हादसा पेश आया जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए। ये बस सर्बिया से पोलैंड जा रही थी और इसमें 57 अफराद सवार थे। हादसे में 37 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों में से 10 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है, जबकि हादसे का बायस बनने वाली गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान से बाहर जाकर भीख मांगने के अल्ज़ाम में इस साल 950 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। कराची एयरपोर्ट से भीख मांगने की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले 49 मुसाफरों को ऑफलोड किया गया। आदादोशुमार के मुताबिक साल 2025 से साल 2026 के दौरान सबसे ज़्यादा 897 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए, मुत्तहिदा अरब अमारात से 22, इराक और अम्मान से 11, कतर से 5, जबकि बहरीन और मलाइशिया से 1-1 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.
3: This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
4: How can I purify my intentions and become sincere in my actions?
5: Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran tells us that one of our objectives in life is mukhlisina lahu ad-din, to be sincere in the practice of our deen. That's why one of the most foundational statements, a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is innamal a'malu binniyat, that indeed actions are based upon the intentions, that we will be rewarded for our actions based off of our intentions. And so sincerity in our deeds is so profoundly important and needed and necessary. But how do we go about the practice of becoming more sincere and purify our intentions? Imam Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, one of the great scholars and thinkers of our tradition, he said something beautiful. Number one, he said that when the tongue says something 1,000 times, the heart says it once. So keep talking to yourself, keep telling yourself, keep reminding yourself to be sincere. I'm doing this for Allah. I'm doing this for Allah. I'm doing this for Allah. And he specifically said, at the start of every action, reaffirm, I'm doing this for Allah. In the middle of the action, remind yourself, I'm doing this for Allah. And at the conclusion of every action, reaffirm, I did this for Allah. And keep doing that in every single deed that you do. And the time will come where that will come out of your heart. And your heart will say that. But in the meanwhile, we keep working, we keep striving, we keep trying. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all sincerity in all of our deeds.

दूर, इस तरह समझ लें। तो अब मैं कहूँगा करीब या दूर, ठीक है। अच्छा, तीन दर्जे हैं, मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब। सबसे करीब कौन सा है? सबसे करीब मुतकल्लिम। उससे दूसरे दर्जे में करीब कौन सा है? मुखातिब। और आखिरी दर्जे में दूर कौन सा है? गायब। अच्छा, अभी बात शुरू हो रही है, दरमियानी यानी करीब है। तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया, आसान किया, जमीन में भी और समुंदर में भी। अच्छा, हत्ता इदा कुंतुम फिल फुल्की, यहां तक कि तुम किश्तियों पर सवार हो गए। अभी तक करीब की बात है या दूर की बात है? करीब। व जरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन, और वो किश्तियां उन्हें ले गई अच्छी हवा की वजह से बहुत दूर तक। उनको हाउ डू यू से सेल्ड, सेल्ड है ना, हाँ, बहाती ले गई उन्हें, उन्हें बहाती ले गई अच्छी हवा, हवा की वजह से उन्हें। ये क्या हुआ? अंदाजा करो, जब बोर्डिंग कर रहे थे, साहिल पे बोर्डिंग कर रहे थे, तो करीब का व्यू था कैमरे का, लेकिन कैमरा जमीन पे रह गया, साहिल पे रह गया, और किश्ती अब क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो दूर का सीगा इस्तेमाल किया, जरैना बिहिम, और किश्ती उन्हें दूर ले गई, दूर तक सवार कर गई अच्छी हवा की वजह से। फरी व फरी हो बिहा, और उस हवा की वजह से वो बहुत खुश भी हो गए। हवा की वजह से वो खुश हो गए। ये भी अभी तक कहाँ हैं हम, करीब हैं या दूर हैं? अब दूर से दूर ही होते चले जाएंगे। जा अच्छा रीहुन आसिफ, और फिर एक ऐसी हवा जो कोई लिहाज ना करती हो वो उन पर आ गई, यानी आंधी जो कोई लिहाज नहीं करती, क्या उल्टेगा क्या पलटेगा। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और उन पर मौजें आने लगी हर तरफ से, यानी अब समुंदर दूर तक पहुंच गए और समुंदर के दरमियान में उसके पेट में जाके एक तूफान आ गया। वज़न्नू अन्नहुम उहीत बिहिम, और उनको पूरा यकीन हो गया कि अब तो वो पूरी तरह से घेराव में आ जाएंगे, पानी के, पानी उनके ऊपर आ जाएगा, वो डूब जाएंगे। दअउल्लाह, उन्होंने दुआ की अल्लाह से, मुखलिसीन लहुद्दीना, अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए करते हुए। इसकी आगे जानने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूं। मेरी एक फ्लाइट थी, याद नहीं पड़ा, यूरोप की तरफ थी मेरी फ्लाइट अमेरिका से। मैं आमतौर पे फ्लाइट में सो जाता हूं, मैं टेक ऑफ से पहले सो जाता हूं और लैंडिंग में मुझे उठाना पड़ता है। अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है मुझे कि मैं बस गए। उसमें क्या हुआ कि मेरी अजीब सूरत हाल थी, मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ गया। मैं उठा तो मेरे साथ कोई बैठा हुआ था, वो फिल्म देख रहा था, कोई और था, उसने हेडफोन लगाए हुए थे, वो कर रहा था। तो एकदम से खड़ खड़ खड़ खड़ जहाज में, फिर दोबारा घर घर कर, फिर फ्लाइट अटेंडेंट भाग के गई है आगे, उसने सीट लग बेल्ट लगा ली अपनी, फिर अनाउंसमेंट आती है, सब अपनी बेल्ट फौरन लगा दें। फिर जहाज ऐसे हिलना शुरू हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो हेडफोन लगाए हुए था, उसने हेडफोन उतारे कि नहीं? उतार दिए। जो फिल्म देख रहा था, फिल्म बंद हो गई कि नहीं? बस उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, वो ऊपर वो कप होते हैं ना, मलकुल मौत वाले कप, अभी बात हो रही थी मुखातिब से क्योंकि साहिल पे थे, फिर पहुंचे दूर कहीं समंदर के दरमियान, और वहां पे तूफान आ गया। तूफान आया तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अपने दीन को खालिस करते हुए, लइन अंजैतना मिन हाज़िही, गौर से सुनना, अगर आपने हमें बचा लिया इससे, बस अगर आप हमें इससे बचा लें, जस्ट गॉट दिस टाइम, जस्ट दिस टाइम। ये कौन सा सीखा है? तीन तीन चॉइसेस हैं आपके पास, मुतकल्लिम, मुखातिब, ये गायब। मुतकल्लिम, हमें बचा लें, अगर आप हमें बचा लें, कहां तक पहुंच गई बात? दिल के अंदर तक पहुंच गई। कैमरा एक रह गया था पीछे, और अब अल्लाह कैमरे को ले आए इंसान के दिल तक, उसके अंदर तक ले आए। मुझे बचा ले मेरा रब अगर तू, लनकू, हमें बचा ले, लनकू नन्न मिन शाकिरीन, हम कसम खाते हैं, कसम से पक्की बात है, हम शुक्रगुजार बन जाएंगे, शुक्रगुजारों की तरह हम बन जाएंगे। ये आपने कैमरा एंगल देखे कैसे बदलते हैं। और मजे की बात पता है क्या है, जब मौत आती है ना, मौत आती है,
تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کلا اذا